श्री दीप नारायण भगवान की, श्री श्री देव पुरीशा महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, अलकपुरी जी महादेव की, सत्य सनातन धर्म की जय।

0: दीप नारायण भगवान अलकपुरी समादेव देवपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन भारत माता की जय।
1: विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

सतगुरु स्वामी माधवानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब ऋषि मुनि महात्माओं की, माता पिता गुरुदेव

0: हरं भगवान की जय श्री देवेश्वर महादेव की जय सतगुरुदेव की जय
1: Ishva Guru Mahamandaleshwar Swami Maheshwarananda Ji Gurudeva Ki Jai Shri Alakpa

0: ओ गुरुदेव
1: ओ गुरुदेव मैं
0: महाप्रभु जी,
1: महाप्रभु जी
0: आप ही ब्रह्मा, यू आर द ब्रह्मा,
1: से ब्रह्मा
0: दैट ब्रह्मा हु इज द क्रिएटर्स,
1: ब्रह्मा, který je stvořitel.
0: ब्रह्मा विष्णु, नो द गॉड विष्णु मेनी मेनी टाइम्स मेनी मेनी, ऑल्सो लाइक वाट कॉल बी द कृष्णा.
1: Jsi Bůh Višnu a také ho známe pod jménem Krišna.
0: आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप हो कैलाश के वासी, एंड ओ गुरुदेव यू आर ऑल्सो रिजाइडिंग इन द कैलाश.
1: O Gurudeve, ty také přebýváš na Kailáši.
0: यू आर रिजाइडिंग देयर.
1: Tam žiješ.
0: आप हो नारद, आप हो सारद, आप हो शेष सुखराशि, आप हो नारद, आप हो सारद, आप हो शेष सुखराशि, आप हो ही, आप हो ध्यानी, आप हो ज्ञानी, आप हो योग प्रकाशी, यू आर इज ब्रह्मा, आप विष्णु, एंड यू आर कैलाश, लिविंग इन द हिमालया इन कैलाश. आप हो नारद, ऑल्सो यू आर द नारद ऋषि.
1: Jsi také Nárad Rishi.
0: आप हो शारदा, एंड आप हो शेष शुक्राशि. शेष शुक्राशि इज वेर दैट वेरी स्नेक वेरी बिग अंडर द ओशन, एंड देयर वेर विष्णु इज रिसाइडिंग.
1: Sezukrás je ten velký had pod oceánem a tam žije Višnu.
0: शेष, एंड शेष मीन्स ऑल्सो वाट रिमेन्स आफ्टर ऑल बट स्टिल देयर रिमेन्स.
1: A ses je také to, co potom všem zůstane.
0: आप हो ध्यानी, आप हो ज्ञानी, आप हो योग प्रकाशी, आप हो ध्यानी, हो महाप्रभु जी,
1: ओ महाप्रभु जी,
0: आप ही ध्यानी, यू हैव मेडिटेशन, यू नो दैट, ओ देवपुरी जी,
1: máš meditaci, znáš to, ó Devpuriji.
0: आप हो ज्ञानी, यू आर द नॉलेज,
1: Jsi poznání.
0: आप हो योग प्रकाशा, एंड यू आर द लाइट ऑफ द योगास.
1: Asi světlo jug.
0: महाप्रभु जी सेइंग टू देवपुरी जी,
1: To říká Mahaprabhuji Devpurijimu.
0: आप हो ध्यानी, आप हो ज्ञानी, आप हो योग प्रकाशी, आप हो देव सब देवी, आप हो सूर्य प्रकाशी, यू आर ऑल्सो माई लॉर्ड, यू आर द शक्ति,
1: Můj pane, si také šakty
0: एंड यू आर ऑल्सो भक्ति
1: a bhakti,
0: देवी.
1: bhakti devi.
0: आप ही सूर्य प्रकाश, ओ देवपुरी जी, यू आर द सूर्य, द सन प्रकाश.
1: ओ देवपुरी जी, ty jsi také slunce.
0: आप हो वेदों के ज्ञाता, आप हो भक्त उर्वासी, आप हो वेदों के ज्ञाता, ओ महाप्रभु जी, यू नो द वेदास, यू नो द वेदास.
1: ओ महाप्रभु जी, ty znáš वेदी.
0: आप हो भक्त उर्वासी, एंड ऑल द भक्तास आर इन अवर हार्ट.
1: A všichni baktové jsou v našich srdcích.
0: आप हो वेदों के ज्ञाता, आप हो भक्त उर्वासी, आप हो संत नाम के दाता, आप हो सत नाम के दाता, ओ गुरुदेव यू आर द सत द ट्रूथ.
1: ओ गुरुदेव, ty jsi pravda.
0: नाउ सो फ्रॉम दैट ट्रूथ नेम यू आर द दाता, ओ गॉड.
1: té pravdy ty jsi.
0: Apho bhakt urvasi. And you are Gurudev in our heart.
1: A Gurudev jsi v našem srdci.
0: Urvasi is the heart.
1: Urvasi je srdce.
0: Apho vedon ke gyata. You are knower of the Vedas.
1: Znáš Vedy.
0: Apho bhakt urvasi. Apho sat naam ke data. And you are the name of the God. Everything you are giving us.
1: A jsi jméno Boží a všechno nám dáváš.
0: Sat naam ke data. Sat means the truth.
1: Sat je pravda.
0: Apho nij svarup ke gyata. And you are that of the gyata, the knowledge, knower.
1: I see znalec.
0: You are the form of the knowledge, gyata.
1: Jsi podobou poznání.
0: Namo, om, namo, prabhu, deep, pranama, brahmanand, urvasi. And about Brahmananji, it is Om Namo Prabhu Deep Pranam. So Om Mahaprabhuji, Prabhuji said, Pranam, salutation. Brahmananda Urvasi, Brahmananda, Brahmananda, Brahmananda. There you are residing, O my Devpuriji, Gurudev.
1: Takže přebýváš tam, můj Dev Puriči, můj Gurudeve.
0: Namo, om namo, prabhu dýpa javinási, apho brahma, apahi vishnu, apho kelas kevasi, apho narad, apho sarad, apho ses sukrasi, apho dhyani, आप हो ज्ञानी आप हो योग प्रकाशी आप हो देव सब देवी आप हो सूर्य प्रकाशी आप हो ब्रह्म विनिर्वाणी आप हो चहूं आपके वासी चहूं इन ऑल डायरेक्शंस यू आर देयर
1: सिर्फ ve všech směrech
0: आप हो वेदों के ज्ञाता आप हो भक्त उर्वासी आप हो सतनाम के दाता आप हो निज स्वरूप के ज्ञाता ओम नमो प्रभु दीप प्रणामा ब्रह्मानंद उर्वासी सत्य सनातन धर्म की देवादिदेव अलकपुरी जी महादेव की देवादिदेव देवेश्वर महादेव की परम आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय सत्य सनातन धर्म स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की ओम शांति शांति शांति हरि ओम
1: हरि ओम गुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय

Yes? हाँ सिद्धि प्रणाम भगवान की जय श्री देव स्वामी महादेव की जय धर्म सम्यक प्रणाम हंसी स्वामी माधव आनंद जी भगवान की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर प्रणाम हंसी स्वामी महेश्वर आनंद पुरी जी गुरुदेव की जय सत सनातन धर्म की जय आख्य आनंद की जय ऋषि मुनि महात्मो की जय श्री अलख पुरी जी भगवान की

की जय। सुदेव स्वामी महादेव की जय। धरम सम्यक परम हंस स्वामी मधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परम हंस स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी गुरुदेव की जय। सत्सनातन धर्म की जय। आख्यानंद की जय। ऋषि मुनि महात्मो की जय। श्रीअलख पुरी जी भगवान की जय।

0: विश्वगुरुजी परमहंसा महेश्वरानंद गुरुदेवम
1: की जय
0: श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय
0: बोली गुरुजी गुरुदेवम
1: की जय
0: श्री देवेश्वर महादेवम
1: की जय
0: श्री अलकपुरीश महादेव
1: की जय

0: ओम सिरियाला पुरीषा महादेवम
1: श्री
0: श्री देवेश्वर महादेवम
1: श्री
0: नारायण भगवान
1: श्री
0: माधवानंद होली गुरुजी श्री साता गुरुदेवम विश्व गुरुजी परमहंसा महेश्वरानंद गुरुदेवम
1: जय।

0: श्री दीप नारायण
1: भगवान की जय।
0: श्री अलका पुरुषा महादेव
1: की जय।
0: श्री देवा पुरुषा महादेव
1: की जय।
0: श्री माधवानंद जी भगवान की जय। श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव जी की जय।

ओम श्री दीपनारायण भगवान की जय श्री अलक पुरुष महादेव की जय श्री देव पुरुष महादेव की जय श्री माधवानंद जी भगवान की जय श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव जी।

0: ओम श्री दीपनारायण भगवान
1: की जय।
0: श्याला पुरुषा महादेव
1: की जय।
0: श्री देवा पुरुषा महादेव
1: की जय।
0: श्री माधवानंद जी भगवान की जय। श्री परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी सत गुरुदेव जी की जय। ओम श्री अलका पुरी जी सदा पिता परम्परा की जय।

प्रदीप नारायण भगवान का जय। गुरु नानक जी महाराजा की जय। प्रदीप नारायण भगवान की जय।

हम देवपुरुषि महादेव की जय, अलकपुरुषि महादेव की जय, दीप नारायण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।